0: पीए तू जान होई सब सह दे लै सह जिंद कवाओ ओ देंदा भी ओ वे पाई लेंदा भी ओ ही है। इस करके गुरु के प्यारे दिगर अर्थ हुंदा दूजा नहीं जे एवं दोष देंदे हो किसे दूजे दे कारण मेरे कोल इन्ना मेनू घाटा पै गया ओदे कारण जिहड़ा घाटा पै तुसी ओदे नू कदे घाटा पाया सी ओदे कोलो ओदा हक कदे मारिया सी अज उसनू मौका मिलिया है। करन करावन कार पिछे निरंकार दा हुक्म चलदा कै
1: तू दाना तू दीना मैं विचार क्या करी।
0: हां दाना दीना शब्द असी बहुत सुनदे आ ना इहदा अर्थ दाना निरंकार तुसी साडे अंदर दियां तमाम जानदे हो स्याणे अंतर जानी हो दीना दा अर्थ तुसी वेखदे हो जो कुछ असी करदे आ परमेश्वर ओनू वेखदा भी ए जानदा भी ए। ये नहीं पी कोई बंदा जो जानदा दूर खलो को ने जानिया वेख्या ते नहीं ना उन्हें असी कह सकते हैं पी तू वेख्या ते नहीं तू जानिया सी की पता सही होवे के ना। कहिंदे परमात्मा जानदा भी जे ते वेखदा भी जे साडे हर कर्म नू ते जे इस गल का एहसास हो जाए भगत जी आखदे ने परमेश्वर वेख रहा है ते ओ जानदा है ते कैसा प्यार बनेगा ओहदे नाल तो किनिया मेरा एकदम खो जाणगियां जे अंदर नू इह सच दा इह कबूल कर लवे इहनू पता ते कह कबूल नहीं करदा अंदर प्रवान नहीं करदा ओह हुंदा है कमाईयां करके ओहनू प्रवान कीता जा सकदा। भगत नामदेव साहिब जी आखदे ने हे मेरे वाहिगुरु तू जाणदा है देखदा है।

धीर जाए। सात गुर विच अमृत नाम है, अमृत कहे कहाए। गुरमति नाम निर्मलो, निर्मल नाम त्याए। अमृत बाणी तत है, गुरमुख वसै मन आए। हिरदय कमल प्रगासया, ज्योति ज्योत मिलाए। नानक सतगुर दिन कौ मिलयोन, जिन तोर मस्तक लेख लिखाई। अंदर तिसना अग है, मनमुख भुख न जाई। मोह पटंब सब कूड़ है, कूड़ रहे लपटाई। आन दिन चिंता चिंत वै, चिंता बद्धा जाई। जमण मरण न चुकई, हौ मैं कर्म कमाई। गुर सरणाई उबरै, नानक लय छड़ाई। सतगुर पुरख हर त्याईंदा, सतसंगत सतगुर पाई। सतसंगत सतगुर सेवंदी, हर मेले गुर मेलाई। ए भौ जल जगत संसार है, गुरबोहित नाम तराई। गुर सिखी पाणा मन्या, गुर पूरा पार लंघाई। गुर सिखां की हर धूड़ दे, हम पापी भी गत पाहे। तुर मस्तक हर दब लिखिया, गुर नानक मिलिया आई। जमकंकर मार बिदारियन, हर दरगा ले छड़ाए। गुर सिखा नू साबास है, हर तुठा मेल मिलाई। गुर पूरै हर नाम दड़ाया, जिन विच्चों परम चुकाया। राम नाम हर कीरत गाए, कर चानन मग देखाया। हौ मैं मारे किलिव लागी, अंतर नाम बसाया। गुरमति जम जोह न सकै, सच्चै नाम समाया। सब आपे आप वरतै करता, जो भावै सो नाए लाया। जन नानक नाम लय तां जीवै, बिन नावै खिन मर जाया। मन अंतर हौ मैं रोग, परम पूले हौ मैं साकत दुर्जना। नानक रो नानक रोग गवाए, मिल सतगुर साधु सज्जना। गुरमति हर हर बोले, हर प्रेम कसाई दिन सरात। हर रती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लबई। सब देखिया जगत मैं टोले, गुर सतगुर नाम दड़ाया। मन अनत न काहू डोले, जन नानक हर का दास है। गुर सतगुर के गुल गुले। श्लोक महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रते सेई जे मुख ना मुड़न, जिनी संयाता साई। चढ़ चढ़ पवदे कच्चे बिरही, जिन्ना कार न आई। धनी विहूणा पाठ पटंबर, पाही सेती जाले। धूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहा, नानक तै सहनाले। गुर कै शब्द आराधी है, नाम रंग बैराग। जीते पंच बैराइया, नानक सफल मारू हे राग। जा मूँ एक ता लख, ताओ जीती पिनने दर कितड़े। ब्राह्मण बिरथा गयो जनम, जिन कीतो सो विसरे। सोरठ सोरस पीजी है, कबहू ना फीका होए। नानक राम नाम गुण गाई है, दरगह निर्मल सोए। जो प्रभ रते आप, तिन कोई न मारई। अंदर नाम निदान, सदा गुण सारई। टेका टेक अगम, मन तन प्रभ तारई। लगा रंग अपार, को ना उतारई। गुरमुख हर गुण गाए, सहज गुण सुख सारई। नानक नाम निदान, हृदय उर हाय।

सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा साह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा। वाहिगुरु जी का खालसा।

खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुद नो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुद नो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच

नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास राउ। हर जन के बड़ भाग बड़ेरे, जन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिला त्रिपतास है, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आई, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गूजरी महला पंजवा, काहे रे मानो चित वह उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मह जन तो पाई, ताका रिज का गय कर तरे।

सब दुख बिसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत बेचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हरे को पुरख समाणा।

पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेव है जो सेव तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ध्याव है हर ध्याव तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत भये जन हर ध्याया जी तन तूटी जम की फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर अनेक अनेक आनंद।

भगत से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जीवड़ अवरना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई। तुद आपे भाव है सोई वरत जी तू आपे करहें सोई। तुद आपे सर

हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तो दवैन दूजा बरना कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए।

ना हो जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विस्तरिया। आस्था महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजा मिलाग भव जल तरन कै, जन्म मृथा जातु रंग माया कै राउ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दर रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो व्रत पारा, हमरे दोष्ट सब तुम काबहो, आप हाथ दय मोहि बचावो, सुखी वसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करे आए, सब बैरन को आज संघरे आए, पूर्ण हुए हमारी आस्था, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम है शाड कोई अवर न त्याऊ, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊ, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे भरे आए, मरण काल का त्रास निवर आए, हू जो सदा हमारे पछा, सरी अस्तुजू करे हो रक्षा।

देवदत्त जशन बजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन कौश

तन तन दुख पाए दे दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर बछाने, कट कट के बड़ बड़ की जाने। जा बुद्ध करख करा कर धारा, प्रजा तरत तब दी अपारा। जा व्या करख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप

बैठ दीनी। कहूं भूत राजा बैठा कहूं सिमट भयो शंकर गैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाई चंपव आज गा स्वरूप स्वयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संग्रो दोष जीते उठव दुपाता सकल मलेश कर वरण काता जे अस्तु तव सरणी परे दिन के दोष्ट दुवत है मरे पुरख जवन पग परे तिहारी तिन के तुम संकट सब टारी जो कल को एक बार ते आए हैं ताके कालो निकट नह आए हैं।

मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैले उभारी, सर्व ठौर मोह सहाई, दोष्ट दोख ते लेहु बचाई। सवैया

एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यो सरी असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहार द्वार बह गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजियां बधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्द ता गावो हरी केरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

क्या नाही करते रहे। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मनाए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु भेटो, जिस दियां ए वडियाइया, कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारू, साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द कर सभागै, कर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस किते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जन कौ, से नाम हर कह लागे, कह नानक तै सुख हुआ, इत कर अनहद वाजे, अनद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख

कहते भवत सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पईओ।

0: जी गुरबाणी दे शब्द शब्द चो अमृत चरता है, गुरबाणी दे शब्द शब्द चो अमृत चरता है। इस नू पढ़िया सुनिया तपदा हिरदा ठरदा है, बाणी पढ़िया सुनिया तपदा हिरदा ठरदा है।
1: ए बाणी सोम अमृत दा, बाणी सोम

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

एक जुड़ी हुई आत्मा, एक रसक आत्मा, एक शीतल आत्मा को जब कोई बैठता है तो उन्हें अपने आप की कुछ शीतलता, कुछ ठंडक, कुछ रस प्राप्त होने लग पैदा है। आप दैनिक चर्या जिस ढंग दे नाल उत्थे सेवादार करदे सन लीन हो गए, सेवा करदे रहे। सहजे सहजे आप साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की नजरां दे पात्र बन गए और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने आप दे अंदर एक छुपी हुई वो चिंगारी वेख ली जो अध्यात्मक मंडल का शोला बन सकती। आप दे अंदर एक ऐसा स्थान वेख लिया जिद उत्ते जोत नूं टिकाया जा सकता सी, जोत नूं बिठाया जा सकता सी, फिर भी प्रीख्या ते लाजमी सी। आखिर वेखना ते सी, कसौटी ते ते परखना सी। सियाणा बंदा ते कसौटी ते परखदा है और हर वस्तु नूं, हर चीज नूं, हर हस्ती नूं परखण दी बकायदा कसौटी है। इस तरह एक परमात्मा दी भी कसौटी है। कबीर, कसौटी राम की झूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। एक दिन करतारपुर में बहुत वड्डा इकट्ठ थी और बहुत वड्डे इकट्ठ नु वेख के गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद नु आख्या बई संगतां नु मिठाई छकानी है और हुणे ही छकानी है। बाबा श्री चंद कहण लगे महाराज हुणे ही हजारां दा इकट्ठ ते हजारां दे इकट्ठ लई इक छिन दे मिठाई रसद पानी दा बंदोबस्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सतगुरु कहण लगे जो जंड दा दरख्त है इस ते चढ़ जा, इनू जोर दा हिला, थले चादर विछा दे, मिठाई टपकेगी, इकत्र कर ले, कठी कर ले, ओ फिर असी संगतां विच वंडांगे। हस पै बाबा श्री चंद, आखण लगे बाबा उम्र दे वडेरे होण करके आप अनहोणियां गल्लां करन लग पए, कदी दरख्तां तों मिठाई टपकदी है और ओ भी दरख्त जंड दा जिन्हों कोई चंगे फल ते फुल भी नहीं लगदे। आप कहने मिठाई टपकेगी, श्री तख पासे बैठ गए तां गुरु नानक देव जी महाराज ने बकायदा दूसरे साहबजादे भाई बाबा लखमीदास आवाज मारी, बेटे तू इस दरख्त ते चढ़ जा, इनू जोर दा हिला, मिठाई टपकेगी, आपां संगतां विच वंडणी है। लखमीदास भी कहण लगे गुरदेव पिता दरख्तां तों मिठाई नहीं टपकदी, वड्डे बिराता ठीक कहंदे ने, इह हनहौणी गल है ते जे जंड दे दरख्त ते चढ़ के मैं हिलाण लगा ते मिठाई दी इच्छा कीती ते लोकी मजाक उड़ाणगे, जगत हसेगा ते मैनू इस हासोहीणी तो बचा ही लो। तो एक पासे लखमीदास बैठ गए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने हुण प्रीख्या लैनी चाही लैणी, कसौटी परम पुरख की कसौटी बड़ी करड़ी होंदी है और उस कसौटी तो कोई पूरा उतर जाए उही कुंदन है, उही कंचन है, उही पावन है, उही पवित्र है। भाई लैणे नूं आवाज मारी ते आख्या चढ़ जाओ इस दरखत ते, झाड़ो मिठाई ते वंडो संगतां विच, थले चादर विछा के। जद भाई लैणा उपर चढ़न लगे तां बाबा श्री चंद ने रोकिया, आख्या लैणिया दरख्तां तों मिठाई नहीं टपकदी और दरख्त भी जंड दा, लोकी मजाक उड़ाणगे, लोकी माहौल करनगे, भाई लैणा

पाई जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा कर पहला। सतगुर सुख सागर जग अंतर, होर थे सुख नाही। होमे जगत दुख रोग व्यापिया, मर जन्मे रोवे ताही। प्राणी सतगुर से सुख पाए, सतगुर सेवै ता सुख पावे। नाही ता जाएगा जन्म गवाए। रहाओ त्रै गुण तात बहु कर्म कमावे, हर रस साध न आया। संध्या तर्पण करे गायत्री, दिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मिलाए। हर रस पी जन सदा तृप्ता, सेव क्यों आप गवाए। तिहु जग अंधा सब अंग कमावे, जिन गुर मग न पाए। नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे, करे अंदर सच पाए। सोरठ महला तीजा, जिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जुग चारे भरमाई, हम भी तुम जुग जुग दाते, सब दे देह बुझाए। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुर दाता मेल मिलावो। हर नाम देवो आधारे, रहाओ मनसा मार दुबदा सहज समाणी। पाया नाम अपारा, हर रस चाख मन निर्मल होआ। किलबिक काटन हारा, शब्द मरो फिर जीवो सदही, ता फिर मरण न होई। अमृत नाम सदा मन मीठा, सब दे पावे कोई। बातें दात रखी हथ अपने, जिस पावे किस दे। नानक नाम रते सुख पाया, दरगे जापे से। सोरठ महला तीजा, सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गत मत कद ही पाए, हर का नाम सच्चा मन वसया। नामे नाम समाए, बिन सतगुर सब जग बौराना। मन मुख अंधा शब्द ना जाने, झूठे परम पुलाना। रहाओ त्रै गुण माया परम पुलाया, होमे बंधन समाए। जमण मरण सिर ऊपर उभो, गर्भ जोन दुख पाए। त्रै गुण वरते सगल संसारा, होमे विच पत खोई। गुरमुख होवे चौथा पद कीने, राम नाम सुख होई। त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता, जो तू करे सो होई। नानक राम नाम निस्तारा, सब दे होमे खोई। सोरठ महला चौथा कर पहला, इको अंकार सतगुर प्रसाद। आपे आप वरतदा प्यारा, आपे आप अपाहो। वनजारा जग आप है प्यारा, आपे साचा साहो। आपे वणज वपारिया प्यारा, आपे सच विसाहो। जप मन हर हर नाम सलाहा, गुर कृपा ते पाये प्यारा। अमृत अगम अथाहा, रहाओ आपे सुन सब वेखदा प्यारा। मुख बोले आप मुहाहो, आपे उज्जड़ पाएदा प्यारा। आप विखा ले राहो, आपे ही सब आप है प्यारा। आपे वे परवाहो, आपे आप उपाएदा प्यारा। फिर आपे कुंडड़ै लाहो, आप कराए साक्षी प्यारा। आप मारे मर जाहो, आपे पत्तन पातनी प्यारा। आपे पार मंगाहो, आपे सागर बोहे था प्यारा। गुर केवट आप चलाहो, आपे ही चर लंगदा प्यारा। कर चोज देखे पाप साहो, आपे आप दयाल है प्यारा। जन नानक बख्श मिलाहो। सोरठ महला चौथा चौथा, आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज। आपे खंड आपे सब लोए, आपे सूत आपे बहुमानिया। कर शक्ति जगत परोए, आपे ही सूत तार है प्यारा। सूत किंचे तह तेरी होए, मेरे मन में हर दिन अवरण कोए। सतगुर विच नाम निधान है प्यारा, कर दया अमृत मुख चोए। रहाओ आपे जल फल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए। सबना रिजक समाहदा प्यारा, दूजा अवर न कोए। आपे खेल खिलाएदा प्यारा, आपे करे सो होए। आपे ही आप निर्मला प्यारा।

पक्षी प्यारे जत नानक भगत समाहा। सोरठ महला चौथा दो तुके अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया। मनमुख कर्म करे अहंकारी साधु परसत ही प्रभ पाया। गोविंद शरण तुम्हारी गोविंद प्रीत लगी अति प्यारी। जब सत्संग पे साधु जन हृदय मिलिया सांत मुरारी। रहाओ तू हृदय गुप्त वसे दिन राती तेरा पाओ न बुझे गवारी। सतगुर पुरख मिलिया प्रभ प्रगटिया गुण गावे गुण विचारी। गुरमुख प्रगास पया सांत आई दुर्मत बुद्ध निवारी। आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सत्संगत पुरख तुम्हारी। पुरख है पुरख मिलिया गुरु पाया जिनको कृपा करी तुम्हारी। नानक अतुल सहज सुख पाया अनदिन जागत रहे बनवारी। सोरठ महला चौथा हर क्यों प्रीत अंतर मन बेदिया हर दिन रह न जाई। जो मछली बिन नीर बिन सह क्यों नामे बिन मर जाई। मेरे प्रभु कृपा जल देवो हर नाई हों अंतर नाम मंगा दिन राती। नामे ही सांस पाए रहाओ जो चात्रिक जल बिन बिल लावे बिन जल प्यास न जाई। गुरमुख जल पावे सुख सह दे हरिया पाए सुभाई। मनमुख पूखे दह दुख डोले बिन नामे दुख पाई। जन्म मरे फिर जूनी आवे दर्गे मिले सजाई। कृपा करें ता हर गुण गावे हर रस अंतर पाई। नानक दीन दयाल पए है कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा अचर चरे ता सिद्ध होई सिद्धि ते बुद्ध पाई। प्रेम के सर लागे तन पीतर ता प्रम काटे आ जाए। मेरे गोविंद अपने जन को देह वढाई। गुरमत राम नाम पर गातो सदा रहो शरणाई। रहाओ ये संसार सब आन जाना मन मूर्ख चेत अजाना। हर जियो कृपा करो गुर मेलो ता हर नाम समाना। जिसकी वक्त कोई प्रभ जाने जिसनो देश पाए। वक्त अनूप अगम अगोचर गुर पूरा अलख लखाए। जिन ए चाकी सोई जाने गूंगे की मिठाई। रतन लुकाया लूके नाही जे को रखे लुकाई। सब कुछ तेरा तू अंतर जामी तू सबना का प्रभ सोई। जिसनो दात करे सो पाए जन नानक अवर न कोई। सोरठ महला पंजवा कर पहला सिपके एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। किस हो जाति किस आरादी जा सबको पीता होती। जो जो दी है बड़ा वडेरा सो तो ठाकुर सी। निर्भव निरंकार पाव खंडन सब सुख नव निर्देशी। हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सालाही। क्या तिस्ता मोहताजा रहाओ जिन हर त्याया सब किस तिस्ता तिसकी पूत गवाई। ऐसा तन दिया सुख दाते निफुट न कभी जाए। अंध भया सुख सहज समाने सतगुरु मेल मिलाई। मन नाम जप नाम आराध अंदिन नाम वखाणी उपदेश सुन।

तू सर्व जिया दयाला सब किछ कीता तेरा वरतै क्या हम बाल गोपाला राख ले हो नानक जन तुमरा ज्यो पिता पूत के पाला सूरत महला पंजवा पर पहला चौथ पे गुरु गोविंद सलाई है पाई मन तन हृदय पार साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार जित तन नाम ना उपजै पाई से तन होए थार साध संगत को वारिया भाई जिन एक अंकार आधार कोई सच आराधना पाई जिससे सब किछ हुए गुरपुर जान आया पाई इस बिन अवर न कोए रहाओ नाम विहूने पच मोए भाई गणत न जाए गणी बिन सच सोच न पाई भाई साचा अगम धनी आवन जान न छुटे भाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी सिमरत शास्त्र सो दिया भाई बिन सतगुर परम न जाए अनित कर्म कर थाकिया भाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सो दिया भाई बिन सतगुर नाही जाए वडपागी गुर पाया भाई हर हर नाम से आए सच सदा है निर्मला भाई निर्मल साचे सोए नगर करे जिस आपनी पाई किस प्राप्त होए ओत मदे जन पाई है भाई विरला कोई कोए नानक रत्ता सत नाम भाई सुन मन तन निर्मल होए सूरत महला पंजवा दो तुके जो लो पाओ अभाव इमाने तो लो मिलन दुराई आन अपना कर्त बिचारा तो लो बीच दिखाई माधवे ऐसी दिहो बुझाई सेवो साध गहो ओत चरना मैं बिसरे मोत चपाई रहाओ रे मन मुग्द अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई प्राण पथ त्याग आन तू रचिया उर्जो संग बैराई सोग ना व्यापै आप न थापै साध संगत बुध पाई साकत का बकना यूं जानो जैसे पान चुलाई ओत पराध अच्छा दियो ए मन कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभु सब लेखा रखो उठाई सूरत महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया सन बंदे ही अंत की बार को खरा न होसी सब मिथ्या स्नेही रे नर काहे कपोरो देही कूद जाएगो तुम बाजरो इक पाजो राम स्नेही रहाओ तीन संज्ञा कर देही कीनी जल तू कर पसमेही होए आमरो गृह में बैठा करण कारण विश्रोही अनक पांच कर मणिये साजे काचे पाग परोही टूट जाए गो सूत बापुरे फिर पाछे पछतोही जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तिस त्यावो दिन रहने ही जन नानक प्रभ कृपा तारी मैं सतगुर ओट गए ही सूरत महला पंजवा गुरपुरा ते प्यो वड पागी मने पया प्रगासा कोई न पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का भरवासा अपने सतगुर के बलिहार है आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे रहाओ अंतर जामी करने हारा सोई खसम हमारा निरपो पै गुर चरणी लागे इक राम नाम आधारा सकल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है बिहो मनहारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया राते नानक कौ गुर पूरा फेत्यो सगले दुख विनाशे सूरत महला पंजवा सुखिये को पेखे सब सुखिया रोगी कै पाणे सब रोगी करण करावन हार स्वामी आपन हाथ संजोगी मन मेरे जिन अपना करम गवाता किसके पाने कोई न फूला जिन सगलो ब्रह्म पछाता
रहाओ। संत संग जाता मन शीतल, ओ जाने सगली ठांडी। हौ मैं रोग जाता मन व्यापक, ओ जन्म मरे बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पड़या, ताको सर्व परदासा। अज्ञान अंधेरे सूजस नाही, बहुर बहुर करमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने, नानक इहो सुख मांगे। जह कीर्तन तेरा साधु गावे, तह मेरा मन लागे। सूरत महला पंजवा, तन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम से आया, सर्व कुशल तब किया। संतन बिन अव

ते जन सेवा हर कीर्तन रस गाये तीहा सुख आगे मुख उजल जन का संगवड पागी पाये रसना एक अनेक गुण पूरन जन की केतक उपमा कही है अगम अगोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है निर्गुण नीच अनाथ अपराधी ओट संतन की आही बूढ़क मोगृह अंधकूप में नानक लेहो निवाही सोरत महला पंजवा हर पहला जाके हृदय वस्या तू करते ताकि तै आस पुजाई दास अपने को तू विसरे नाही चरण तूर मन पाई तेरी अकथ कथा कथन ना जाई गुण निदान सुख दाते स्वामी सबते ऊंच बढ़ाई रहाओ सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई सेवक को तुम सेवा दीनी दर्शन देख अघाई सर्व निरंतर तुम्हें समाने जाको तुद आप बुझाई गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना प्रगट पय सब ठाई सोई ज्ञानी सोई ज्ञानी सोई पुरख सुभाई कहो नानक जिस पय दयाला ताको मन ते दुसर न जाए सोरठ महला पंजवा सगल समग्री मोहे व्यापी सब ऊंचे सब नीचे शुद्ध न होई है काहू जतना ओरख को ना पहुँचे मेरे मन साध शरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पुलावा कहियत तिन में उर्जो सगल संसारा पूरन भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक पे न्यारा निंदो नाही काहू बात है एहो कसम का किया जासो कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाओ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना करत उधारा कहु नानक गुर बिन नहीं परिय इह पूरन सत विचारा सोरठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज विचार्यो राम नाम तत सारा किलबिक पाटे निमित आराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महाकृपत मन पावे साधु अमृत बानी रहाओ मुक्त पुगत जुगत सत पाये सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूरन सुरत विधाता श्रवणी सुनिए रसना गाये हृदय त्याये सोई करण कारण समरथ स्वामी जाते बिरथा न कोई वड्डे पाग रतन जन्म पाया करो कृपा कृपाला साध संग नानक गुण गावे सिमरे सदा गोपाला सोरठ महला पंजवा कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट विघ्न लाके प्रभ शरणा प्रगटे पले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई भगत वचल दयाला संता की पैज रखदा आया आप बिरद प्रतपाला हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा ताप सब नाथा गुण गोविंद नित गावो सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद एक पिता एक के हम बारक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन देहो दिखाई सुन मीता दूरी को बल जाई ए मन तेरा भाई रहाओ पाप मलोवा मल मल धोवा ए मन तै पूजेसा
हुण मीता हो तेरी शरणाई आया। प्रभ मिलो देओ उपदेशा, मान ना कीजै शरण परी जै, करे सो फला मनाई। सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पी जै, क्यों दर्शन हर जियो पाई है। पयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै, हर नाम है मीठा जन नानक को गुर कृपा तारी, सब अकुल निरंजन दीठा। सोरठ महला पंजवा, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्व जिया सा दाता रे, प्रतपाले नित सार समाले, एक गुण नहीं मूरख जाता रे। हर आराध न जाना।

सागर सर्व घटा भरपूरी रे ते सत सुनत सदा है संगे मैं मूर्त जान्या दूरी रे हर बेअंत हों मित्र वर्णो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरु अपने मैं मूर्ख देव उपदेशो रे मैं मूर्ख की के तक बात है कोट परादी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया ते फिर गर्भास न परियारे सूरत मैला पंजवा जिना बात को बहुत अंदेसरो ते मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊद कमल दिखाया देखो अचरज भया जिन ठाकुर को सुनत अगाध बोध सो हृदय गुरु दया रहाओ जो दूत मोह बहुत संतावत ते भयानक भया करें बेनती राख ठाकुर से हम तेरी शरणया जह पंडार गोविंद का खुलिया जिन प्राप्त तिन लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर न हुआ भगत पंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल क्यों जाता मन लीना सेजन कृपित अघाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिखाई हर आराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही जिस लाख बेदन जन आई रहाओ जिन जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने जिन गुरमान प्रभु लिवलाए तेह महा आनंद रस करया जिन प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में करया जिसको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय तय मगन करनारा सोरठ महला पंजवा राजन में राजा उरझायो मानन में अभिमानी लोभन में लोभी लोभायो क्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावे पेट निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावे रहाओ अमलन क्यों अमली लग पायो तुमन कुम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यंती रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रसना साव लुभानी क्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सूरत महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण उदाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता।

गुण नहीं कोई, तुम दान दो मेहरवाना। तुम करो पला हम पलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाते, कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन के पाछे। सूरठ महला पंजवा कर दूजा, माप गर्भ में आपन सिमरन दे, कह तुम राखन हारे, पावक सागर अथार।

क्रोध लोभ मोह अभिमाना तामे सुख नहीं पाये। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अनद मंगल सुख पाये। काल न पाने अंतर विद जाने ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूरत गुरुदेवा। गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नाम प्राण आधारा। सूरठ मेला पंजवा मृतक को पायो तन सासा विचरत आन मिलाया पशु पर एक मुगद पै स्रोते हर नामा मुख गाया। पूरे गुर की देख बढ़ाई ताकि कीमत कह न जाए रहाओ दुख सोग का टायो डेरा अंग मंगल विश्रामा मन बाछित फल मिले अचिंता पूरन होए कामा। इहा सुख आ गए मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पे हृदय नाम वस्या अपने सतगुर के मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द क्रम पागा कहो नानकता के पूर करमा जाता गुर चरनी मन लागा। सूरठ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु न पाये। पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याय। सिमरो हर हर नाम परानी बिनसै साची दे अज्ञानी रहाओ मृग तृष्णा और सुपन मनोरथ ताकि कछ न बढ़ाई राम।

पावत पावत ने तृप्तास्या राम नाम नहीं सीना। साद विकार बिखै रसमा तो असंख खते कर फेरे, नानक की प्रभु पावे।

तेरा पद प्रेम भगत प्रभ मेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अघाई जत तत पूर रहो परमेश्वर तत आवे तत जाई जब तक संजम ज्ञान तत देता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताकी पूरन ताला कल कलेश मिटे दुख सगले काफी जमकी पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन पे विगासा सूरज मैला संजमा करण करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला सो प्रभ अंतर जामी

साची दरगो माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब बलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैस सवारी गोस्त ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनद सेती पर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता रहाओ सतगुर नाम निधान दृढ़ाया चिंता सगल विनाशी कर कृपा अपनो कर लीना मन वस्या विनाशी ताको विघ्न ना को लागे जो सतगुर अपने राखे चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस चाखे कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नाम सुदास ताके बलिहार है जिन पूरन पैज रखाई सूरठ महला पंजवा माया मोह मगन अंधियार है देवन हार न जाने जियो पिंड छाज जिन रचिया बल अपनो कर्माने मन मूड़े देख रहे हो प्रभ स्वामी जो किछ करे सोई सोई जाने रहे न कछुए छानी रहाओ जेवा स्वाद लोभ मद मातो उपजे अनक बिकारा बहुत जोन परमत दुख पाया हूँ मैं बंधन के पारा देखिवार अनक पर्दे में परदारा संग थापे चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ठाके दीन दयाल पूरन दुख पंजन तुम बिन ओट न खाई काड ले हो संसार सागर में नानक प्रभ शरणाई सूरठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सहाय कथा कीर्तन सुखदाई गुरु पूरे की बाणी जप अंग करो नित प्राणी हर साचा सिमरो भाई साध संग सदा सुख पाय हर विसर न कभू जाय रहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै सो जीवे जिसनो कर्म प्राप्त होवे सो जन निर्मल थीवे विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अंदिन हर रंग जागा मन इच्छे से ही फल पाए हर की कथा सुहेली आद अंत मद नानक को तो प्रभ हुआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन से मोह मेरा और तेरा बिन से अपनी सारी संतो यहा बताओ कारी जित हो मैं गर्भ निवारी रहाओ सर्व पूत पार ब्रह्म कर्मान्या होवा सगल रे नारी पेक्यो प्रभ जियो अपने संगे चूके ठीक परमारी औषध नाम निर्मल जल अमृत पाये गुरु दुआरी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया इस गुर मिल रोग बिदारी सूरठ महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंसार सतगुर प्रसाद सगल वनस्पत में बैसंतर सगल दूध में किया ऊंच नीच में जोत समानी कट कट माधो जिया संतो कट कट रहा समायो पूरन पूर रहे सर्व में जल फल रमैया आयो रहाओ गुण निधान नानक जस गावे सतगुर परम चुकायो सर्व निवासी सदा अलेपा सब में रहा समायो सूरठ महला पंजवा जा के सिमरन होए आनंदा बिन से जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नव निध पावे बहुर ना कृष्णा सुखी जा को नाम लै तू सुखी सास सास से आवो ठाकुर तो मन तन जीरे मुखी रहाओ सांस पावे होवे मन शीतल
अगन नाम तर सुखी गुरु नानक को प्रभु दिखाया जल थल त्रिपवन रुखी।

आपन निकट बुलावो, अपनी विद आप जनावो, हर जन मंगल गावो, रहाओ बिसर नाही कब हुए ते, ए विद मन में पावो, गुर पूरा पेचो वड फागी, जन नानक कतह न तावो, सोरस महला पंजवा, जा कै सिमरन सब कछ पाइए, बिरथि काल न जाई, किस प्रत्याग अवर कचरा तो जो सब में रहा समाई, हर हर सिमरो संत गोपाला, साध संग मिलना।

तन सो देश जहां तू बसया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हाँ कोली हाँ कोल कमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी।

बिरहो हुंदा विछोड़ा, बिरहा विछोड़े दी कसक। ये जिन्हों होवे प्रतीत होवे अक्सर साडे नाल घटनावां वापरदियां हन, जिहड़ियां मावां ने अपने बच्चियां नूं दो दो सालां दा इस देश च चौं चौं सालां दा भेज दिता होया, उन्हां दा बहाना नहीं को बढ़िया वापस मुड़न दा, मजबूरियां हन। कदी उन्हां मावां कोलों पुछ के वेखीए, उत्थे बड़ा दिल वड्डा कर लैंदियां हन, कह दिंदियां हन फोन ते पुत कोई गल नहीं। पर सच है ये दुनियावी विछोड़े भी ऐसे ही हैं, पर जिन्ना दे अंदर रब दा विछोड़ा महसूस हो जाए, जिन्हों सतगुरु गुरु अर्जन देव जी कहिंदे हन, विछोड़ा सुने दुख विण डिठे मरियोत। विछोड़े दी कड़ी सुनना वा ये दुख दी कड़ी है, वेखण तो बगैर मेरी मौत हुंदी है। बाज प्यारे अपने बिरही ना तीरो, मालक दे प्यार तो बगैर मलाप तो बगैर किवें मैनू हौसला आवे। ताहिते सतगुरु कहिंदे हन, जिहड़ियां उह चार चिट्ठियां हन ना सतगुरु दीआं, तीन चिट्ठियां चौकी हजूरी च उचारण कीता सी, तीसरी च कहिंदे हन इक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। हुण कद मिली है प्रे तुद भगवंता, मोए रहण ना विहावै नींद ना आवै, बिन देखे गुर दरबारे जी, मेरी रात नहीं बीतण च आउंदी मैनू नींद ही नहीं आउंदी। नींदा उड जांदियां हन, सच है उन्हां प्यारियां दियां भी उड जांदियां हन, जिन्हां नूं गुरु दा प्रभु दे मिलाप दा यह अहसास हो जाए मैं बिछड़ चुका हूं, मेरा विछोड़ा है। मिलाप भी होना तो इसे जन्म च ही होना, मुड़के मौका भी कोई नहीं, मुड़के फिर बड़ा लम्मा चक्कर है। मिलाप होवेगा तो हुण होवेगा जिन्हों अहसास हो जाए। कबीर साहब कहिंदे, कबीर चकई जो निस बिछड़ै आए मिलै प्रभात, जो नर बिछड़े राम स्यों ना दिन मिलै ना रात। रब नालों विछोड़ा ये बड़ा लम्मा है, जे हुण ना मिलाप होया तो मुड़ के बहुत औखी गल है। इसे विछोड़े नूं कबीर साहब जी ने भी कहा है, कबीर साहब कहिंदे हन, कबीर बिरहों पोयंगम मन बसै, मंत न मानै कोय। जिन्हां दे अंदर ये बिरहे दा सप वड़ जांदा है, पोयंगम सप विछोड़े दा सप अंदर अंदर डंग मारदा तेरे। कबीर बिरहो पोयंगम मन बसै, मंत ना मानै कोय। ये किसे मंत्र नूं भी नहीं मानदा, ये किसे मंत्र नूं नहीं मानदा, कोई गारड़ू मंत्र इहदे ते लागू नहीं हुंदा। मंत ना मानै कोय, राम बेयोगी ना जीऐ, जीऐ तां बौरा होए। रब नालों विछड़िया जिहनूं महसूस हो गया सच है जीना ही औखा हो जाता, जीता भी है लोग उन्होंने कहते हैं पागलों वर्गा काम है। सच है जिन्ना चिर दुनिया की अख च पागल नहीं बनता उन्ना चिर मेरे रब की प्राप्ति भी नहीं, आनंद ही उदो आएगा। जीवन च आनंद उदो ही आएगा जदों सृष्टि ऐसा कहती, क्या गुरु नानक साहब जी क्या भगतान प्यारियां नूं भी यही गल कही है, सच है उदो कसकदा यह विछोड़ा ऐसा। इसे विछोड़े बारे फरीद जी भी कहते हैं, कहते हैं बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तू सुल्तान। कहते हैं लोक बिरहा ये विछोड़ा बुरा है, बड़ा बुरा है। कहते हैं नहीं विछोड़े तू ते सुल्तान है, तू ते राजा है। कहते हैं जित तन बिरहों ना उपजै सो तन जान मसान। जिन्हों मनुखा शरीर पा के ए पीड़ी अंदर पैदा नहीं हुई कि मैं विछड़िया होया, कहते हैं वह मसान है शरीर, सो तन जान मसान। उसे मसाणा भी नहीं आई है ये पा के जन्म, कितने विछोड़े की कसक ही नहीं पैदा हुई, मैं रब नालों टुटा होया, मैं वाहेगुरु नालों विछड़िया होया हाँ। होया भाई गुरदास जी कहते हैं
अब कहना भेटा नाथ बोरियो ना आवे हाथ बिरहा बिहाए जावे बड़ो भाई नीच को। जे हुण इस जन्म च तू ना मालिक मिलिया मैं इस तरह ही विछड़िया ही चला गया ते विछोड़ा ते मौत दा वड्डा भरा है। वड्डो भाई मीच को, मीच दा अर्थ है मौत, ये मौत दा वड्डा भरा है। सतगुरु कहिंदे हन ए बिरहा ए तेरा विछोड़ा मैनू मालिक नींद नहीं, नींद ना पवै किवें, नहीं नींद आउंदी। सतगुरु जी दा वचन है मोहन नींद ना आवै हावै, हे मालिक मैनू नींद नहीं आउंदी हावै होके। सच है फिर ये टिकाणा ही इत्थे दा ऐसा। वो जिहड़ी आशकारा नौ निशानी, नौ निशानियां हन ना रब दे आशकां दीआं, उहदे च दस्सिया गया उहनां दी भुख मर जांदी, उन्हां दी नींद हराम हो जाती। भाई नंद लाल सिंह जी भी एक तां कहिंदे हन जिस दिन तो मैं तो सुता ही रहिंदा सां, वैसे सुते ही रहिंदे सन, इन्हां दी घरवाली सिंह वाहिगुरु सिख दी बच्ची उस सुखमनी साहब पढ़दे सन, उह जपजी पढ़दे सन। जदों पहलो सन ना गजनी तो तुरे, उदों इन्हां नूं सिक्खी बापत कोई नहीं सी। सच्चा मैं कहना एक ही जी कित ऐसा होवे जिहड़ा बाणी नाल परिवार विचों जुड़ जाए। असी ते कहांगे, असी बड़े तंज करांगे, सच्चा एक ही कित जुड़ जाए ना, पता नहीं एक ही साडियां कुलां नूं तार देगा, सारे परिवार नूं जोड़ सकदा है। भाई नंद लाल सिंह जी दे, नंद लाल जी दी घरों उहनां दी तरुण सपत्नी ही शुरुआत विच उहनां दे जीवन नूं रस नाल भरन वाली। कहिंदे हन इत्थे नींद ना आवै मोहन, नींद ना आवै हावै, ओ नौ निशानियां च इक नींद भी है, भुख भी है, जर्द रंग हो जाना, होर निशानियां जिहड़ियां दसियां हन। खैर इत्थे कहिंदे हावै, कहिंदे हन हार कज्जर बस्तर अपर्ण कीने। जिवें दुनियावी कोई इस्त्री अपने पति दे विछोड़े विच भावे ओ हार शिंगार कर भी रही है, कर आपरन सवारी सेजा कामन थाट बनाया, संग ना पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया। इसे तरह असी जीव रूप स्त्रियां पति साडा परमेश्वर है, ये आपा हार शिंगारी कीता है। पंज ककार कादे वास्ते हन, किते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की खुशी मिल जाए। असी ये शिंगार बाहरी भी ते अंदरूनी भी, ये कादे वास्ते हन, किते गुरु की खुशी मिल जाए। काजल बस्तर अपर्ण कीने, ये सारे पाए, उडीनी उडीनी उडीनी कब कर आवेरी। हे मालिक मैं उड़ीक रही हाँ, अगे आएगा ये शब्द फिर, उड़ीनी अखर फिर इसे ची आएगा। कहिंदे हन ऐसे विछोड़े दी कसक मालिक नींद नहीं आ रही, हर सज्जन लद्दा मेरे प्यारे नानक गुरु लिवै। उस सज्जन प्यारा धन गुरु गुरु रामदास जी कहिंदे लब पिया ते मेरे अंदरों ही लब पिया। लब्बा कदों, जदों गुरु दे बरकत नाल मेरी लिव परपक हो गई, किते गुरु बख्शिश करन। सच्चा शुरुआत विच असी कहिंदे आ नाम जपने आ मन उड जांदा है, पर कदी जपणों ना हट जाना, कदी ये भुलेखा ना खाना, एक दिन आ जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जपदिया जपदिया, ऐसा आ जाएगा जिस दिन मन जुड़न लग जाएगा अपने आप ही। जिन्ना ने जपिया है ना, जिन्हां ने आनंद माणिया, उन्होंने जरूर यह पता होगा। सच है शुरुआत विच ऐडा बैड़ा घोड़ा एक कितों काबू आ जाए। भाई नंद लाल जी ते कहिंदे हन जरा क सवार ढिला होया नहीं, इन्हें पटका के मारिया नहीं, जरा कि सवार ढिला हो जाए ये तो सुट दिंदा उसे वे नहीं। कहिंदे हन जुड़े रहो, जुड़े रहो, नाम जपना पहला कर्म है, नाम नहीं एक दिन सिमरन बन जाना। पर सच है सिमरन भी टुटेगा, सिमरन भी टुटदा है।
ਨਾਮ ਕਦੀ ਜਪਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਠ ਹਿੱਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਲਿਵ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਆਇਆ ਸੀ ਮਲਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੁਕਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ ਫਿਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੇ ਮੁਕਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਆ ਜਾ। ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੋਲਦਿਆਂ ਤੋਲਦਿਆਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਰਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਾਰਨਾ ਸੱਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸੱਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ 13 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ 13 13। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕੇ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਕੰਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸੱਤ ਤੇ 13 13 ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਭਗੀਰਥ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਭਰਮ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਭਰਮ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਵ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਵ ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਲਿਵ ਨੂੰ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦੀ। ਵੇਖਿਆ ਲਿਵ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ, ਲਿਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਲਿਵ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਲਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਲਿਵ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਲਿਵ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਵ ਦੀ ਪਰਪਕਤਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲਿਵ, ਮਾਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਆਓ ਰਹਿਮਤ ਚੇਤ ਚੜ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਲੀ ਰੁੱਤੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਭਲੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਚੇਤ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਹੋ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਕੇ ਹੰਗਾਮ ਨੌ ਬਹਾਰ ਆਮਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾ ਹੋਸ਼ ਕਰੀ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ। ਵੇਖੀ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਰੁੱਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਰੁੱਤ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ? ਮਾਰੀ ਗਈ ਫਸਲ। ਮੇਰੇ ਅਮਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੂਖਮੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਚੜ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਲੀ ਰੁੱਤੇ, ਇਹ ਭਲੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ। ਚੇਤ ਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਜੜਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਂਗਣ ਧੂੜ ਲੁੱਤੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਣ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਇਆ,
ऐसा ना होवे मालिक तो बगैर तेरे हिरदे रूपी वेड़े विच वकारां दी खे उड़दी फिरे। काम क्रोध खे उड़ाउंदे फिरन, आंगण तूड़ लुते आंगण वेड़ा, उहदे च तूड़ उड़दी फिरे। उड़ीनी मन आस उड़ीनी मेरे प्यारे, मेरे मन च आस है मालिक मैं उड़ीक रही हां, दोए नैन जुते दोवे नैन मैं तेरी उड़ीक विच लाए होए। पता जदो किसे नू वेखना होवे दूरो बड़ी नीज ला के वेंदा मेरा प्यारा कोई आ रहा है। सतगुरु कहिंदे गुरु नानक देग विकसी मेरे प्यारे, ज्यों मात सुते गुरु नानक पातशाह दे दर्शन करके। मैं कल भी बेनती कीती सी इस ए भाई हरबंस सिंह जी ने भी महापुरशां ने भी, जदो गुरदे भी राजे नू औंकड़ आ जाए ते नानक कक्के दे भी औंकड़ नू गुर आ जाए, उदो ये सतगुरु जी गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी गुरु नानक साहब जी नू याद कर रहे होंगे। इस करके गुरु नानक साहब जी नू वेख के उन्होंने शब्द राही उन्हां दे दर्शन करके कहिंदे हन ज्यों मात सुते जिवें मां अपने पुत्र नू वेख के खिड़ जाती है, विगास च आ जाती है, पुत मां नू वेख के खुश हो जाता है। बस इस तरह मेरे अंदर विगास, इस तरह मेरे अंदर खेड़ा आ गया। जे असल प्यार होवे गुरु बख्शिश करन होईयां गलतियां मुआफ जी, अगे तो सुधारता समत इनियां बेनतियां प्रवान करनियां। गुरु फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी।

जिनने मेरा मिलाप मूल जोत वह गुरु परमेश्वर नाल करा दिता, सतगुरु गुरु रामदास जी का यही इसे ढंग का सूही राग विच शब्द है ते तकरीबन थोड़ा जिहा शब्द का बनतर च फर्क है। हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया, बलहारी गुर अपने गुर को बल जाने। सच है किसी बंदे की कहानी सुनानी बड़ी सौखी है, जाति तौर पर जानते होंने कि पढ़ लिया सुना दिता जीवन साढ़े नाल मिलती जुलती होंगी है। बंदा सुना देंदा सुन च भी रुचि पैदा हो जाती है, पर मालिक की कहानी करनी भी कठिन ते सुननी भी कठिन। कभी सुखमनी साहब समेत अर्थां दे आप जीयां ने दर्शन किते होन, इन्नी रोचक बाणी है पढ़दियां पढ़दियां ही रहमतां हुंदियां जांदियां। पर कभी इक्कीवीं अष्टपदी वल ध्यान देना, सरगुण निर्गुण रंग का सुन समाधि आ, वड्डे वड्डे विद्वान फस जाते हैं। रब की कहानी नरोल डायरेक्टली, बाकी ये नहीं मैं कहिंदा कि बाणी विच रब की कहानी नहीं, नरोल बाणी सतगुरु जी ने एक ला दिता बाणी उचारण तो पहला। ते सच है सारा गुरु ग्रंथ साहब सचे पातशाह जी ये जिन्नी कहानी है ये एक ही वाहेगुरु की कहानी है। भावें सतगुरु जी ने किते सच झूठ का नतारा किया, मनमुख गुरमुख का नतारा किया, पर उदे विच जोड़िया सानू एक नाल, एक वाहेगुरु नाल, एक परमेश्वर नाल। एक दी कहानी करनी सुननी दोनों कर्म ही अति कठना। जब असी संसार दे धार्मिक ग्रंथां दे दर्शन करने आ ना होर ना दे, उस वेले जब किसी ने बाइबल दे दर्शन किते हों, सच है उहदे च रब दी कहानी ने, उहदे विच ईसा मसीह जी दी कहानी, भावें वह यूहन्ना दी है, भावें वह मार्क मैथ्यू लूका वह जिन्ने भी लिखण वाले लिखारी सन जिन्ना ने बाइबल वक्रे वक्रे ढंगां नाल लिखी, सानू प्रतीत हो जाएगा ये ईसा जी दे जीवन दे कौतक सानू मिल रहे। कभी रामायण पढ़ के देख, रामचंद्र जी की कहानी कभी भावें इस तरह वो वेद वो कृष्ण भगवान जी का दिता उपदेश जो कुरुक्षेत्र के मैदान गीता दे रूप

रखना, जिन्ने भी ग्रंथ पढ़ोगे रामायण विचो राम जी भी सारा जीवन लभ जाएगा, इसके तरह बाइबल विचो सारा जीवन लभ जाएगा ईसा जी का, कुरान विचो सारा जीवन लभ जाएगा मुहम्मद जी का। पर सच एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक दर्शन करने भावे जिन्नी बारी मर्जी कर लेने, कि गुरु कृपा करे। मैं ते कहना एक बारी कि दर्शन हो जान, एक बारी हो भावना नाल ते जीवन विच अर्था समेत एक बारी हो जान, कदी करके वेखड़े तुसी नहीं लब सकोगे कि गुरु नानक साहब जी दे महल केड़े, नहीं लब सकोगे कि सतगुरु जी दे सपुत्रां दा की नाम सी, नहीं लब सकोगे गुरु नानक साहब जी ने किथे किथे केड़े केड़े कौतक कीते, गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर्शन करके आपां नहीं लब सकते। तां ही गुरु घरां विच नाल इतिहास की भी कथा हुई, तां कि सिख अपने इतिहास नाल भी जुड़िया रहे। जरूरी है इतिहास नालों किते टुट ना जाइए, पर सच है गुरु ग्रंथ साहब नरोल परमेश्वर की कहानी, नरोल रब दी परमेश्वर वाहेगुरु की कहानी है, किसी होर दी कहानी नहीं। भावे दूजे पातशाह जिया ने बाणी उचारण कीते, पर नरोल एक वाहेगुरु की सिफत, ताई दूसरे दुनिया के ग्रंथ अज दे विज्ञान अगे टिक नहीं सके। पर धन गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे सन्मुख शरदावाना का तो शीश झुकेगा ही झुकेगा। सच है विज्ञान भी नतमस्तक होंदा। मैनू एक कहानी याद आई, रविंद्र नाथ टैगोर बंगाल दे महान लकारी, बड़ी वड्डी पुस्तक है गीतांजलि, कहिंदे हन इन्हां कोलों कदी पुछया किसे ने प्यार विच पुछया, कहन लगे तुसी हिंदुस्तान दा इंटरनेशनल पद्धर दा गीत जन गण मन गाया है वो तुसी लिखिया, जे तुहानू वर्ल्ड लैवल दा जेड़े गीत विचों सारा वर्ल्ड ही अगवाई लै सके, तुहानू लिखण वास्ते कहा जाए उहदा किहो जिहा रूप होवे, वो किहो जिहा लिखोगे। ते रविंद्र नाथ टैगोर ने कहा से सानू सब नू गुरु नानक साहब जी दे चरणा च झुक जाना चाहिए। कहन लगा ओ जेड़ा सतगुरु जी दा शब्द है ना, गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती, कहिंदे हन सारे वर्ल्ड वास्ते, एक वास्ते नहीं है, ये सारी दुनिया एदे च कवर हुंदी है। एदू उत्ते कोई गीत उचारनी नहीं कर सकता, एदू उत्ते कोई शब्दावली सुंदर ए रविंद्र नाथ टैगोर दे बचन। इस करके ए रब दी कहानी है, रब दी कहानी सब ते लागू हुंदी है। तां ही ते वड्डे वड्डे विद्वान कदी ओ राम तीर्थ दंडी सन्यासी ओदे छोटे छोटे ट्रैक्ट हन, श्रोमणी कमेटी वैसे फ्री देंदी है, सर्वोत्तम ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ये उन्हें लिखिया। फिर उन्हें गुरु पंथ की उपमा विच भी लिखिया, ऐसा बंदा ऐसा विद्वान जेड़ा हिंदू जगत विच एक वारी नहीं बहुत वारी नोबल प्राइज, बहुत लिखता करके बहुत किताबा उन्हें धार्मिक तौर पर लिखिया, सच्चा सत्कारिया होया पुरश, ऐसा बंदा ऐसा विद्वान जेड़ा कदी जापान विच राजे दे घर जिसकी मेहमान नवाजी हुई, जापान विच राजे दे घर मेहमान नवाजी, पर वो कहिंदा है दुनिया दे लोको जिन्ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन कर ले ना, सच है उन्हू भटकण दी किते लोड़ नहीं, बस एदू अगे दुनिया का कोई धार्मिक ज्ञान नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब जी वर्ल्डिंग ते एहो जी
मैं सारी उम्र रेता छाणी गुरु ग्रंथ साहब जी दर्शन करके मैं गदगद हो गया, सिक्खी नू समर्पित हो गया सी। सच है क्यों? क्योंकि रब दी कहानी। कदी गवर्नमेंट ऑफ वर्ल्ड जद भी कदी इकट्ठे होके बैठणगे विचार करणगे किते कट्टड़ता दा पर्दा अपनिया अखां तो दिल दिया अखां तो ला के सच है सब नू ए मनना पवेगा गुरु ग्रंथ साहब जी कुल संसार की अगवाई कर सकते। क्यों? रब की कहानी, परमेश्वर की वाहेगुरु की कहानी है। जिसने भी दर्शन किते गद गद हो गए। ये सुनाई किन्ने? ये मेरे सतगुरु, ये मेरे गुरु नानक साहब जी ने साडी झोली दात पाई। हर किया कथा कहानियां मेरे प्यारे सतगुरु सुनाइया। मैं गुरु तो सदके, मैं गुरु तो बलिहार हाँ। जिस गुरु ने ऐसी रहमत की थी, ऐसी बख्शिश की थी, जिदे समान अंतर दुनिया का कोई ज्ञान नहीं। आपो अपने थान सत्कारित हैं। ये नहीं कि असी दूसरियां नू नीमा विखा दीए, पर दूसरियां नू पढ़ के देखो तो गुरु ग्रंथ साहब जी बारे धन गुरु नानक साहब जिन्हों का आपा पुरब बना रहे, धन गुरु नानक साहब जी बारे। क्यों? क्या गया जदों मैं कल भी सांझ पाई सी आप जी ना, सतगुरु जी वे प्रवेश होए श्रद्धावान गुरसिख ते समझ दे हम के मालक दे सचखंड वाहेगुरु मालक दे दरबार बुलाए गए। ओ नाम दा प्याला प्रवान कीता जदों बचन हो गया।

0: राज कुआर, नाम पणो सच दोत सवार। बेटियो पियो जे मेरे कोल बैठना ते फिर बैठ जाओ, आनंद ना कीर्तन सुनो, नहीं ते जाओ ए हाव भाव करने हन ते जाओ अपने पत्नियां को, ये मेरे कोल करन दी कोई लोड़ नहीं। इत्थे कुदरत ने जो हवा दिती है ना, इत्थे दुर्गंध छड्डण दी कोई लोड़ नहीं। इत्थे दुर्गंध जो उन्हां सेंट लाए हुए हन, मेरे सतगुरु कहिंदे जो बागां चो हवा आ रही है ना, ओदे तो वध सुगंधी केड़ी सुंदर हो सकती। सतगुरां ने एक पंक्ति नाल उन्हां दा अंदर शांत कर दिता, जाके दस दिता सच्चा जापदा गुरु नानक साहिब आ गए। सच्चा जिस गुरु नानक साहिब दीआं इन्नीआं बरकतां उहदे नाल खेड खेड। हां क्यों पाई गुरु गुर जित लग प्यारा देख सां, मैं गुरु नूं किवें मिलां, किवें गुरु दी रहमत होवे जिहदे नाल मैं प्रभु दे दर्शन हो जाण। बस एक ही संग है, अगो रहमत गुरु ने आप करनियां हन, मेरा मना सन्मुख हो गुरु दे, हर दातड़े मेल गुरु बेनतियां कर, हे परमेश्वर मैनू गुरु दा मिलाप बख्शो। मुख गुरमुख मेल सां, फिर ए नहीं कला गुरु नहीं, जेड़े महान कमाई वाले गुरसिख हन ना, उन्हां दी संगत विच भी रहण दा यतन कर। सतगुरु बख्शिश करदे हन, गुर नानक पाया मेरे प्यारे और मस्तक लेख सा, फिर गुरु नानक दी प्राप्ति। मैं ये जिन्ना शब्द है ना, जिन्नी वारी आया ये नानक नाम दी छाप नहीं, केवल ये गुरु नानक साहब जी का वाचक है। हाँ ये प्राप्ति किवें ते किन्ना नूं होई, जिन्ना दा कोई तुरों मस्तक लेख लिखिया होया सी पूर्वला कर्म, पूरे गुरु की प्राप्ति हुई, गलतियां मुआफ जी। अगो सदारता समत गुरु फतेह सांझ पाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा
1: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375। साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha at Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

माँ तो हर हर हर मुख कही है, हर हर हर मुख कही है। माँ तो हर हर हर मुख कही है, हर हर हर।

दिल्ली में गुरुद्वारा श्री रिकाबगंज साहब तो बोल रहे हैं। आज मानवता ने अवतार साहिब श्री गुरु नानक देव जी का अवतार पूर्व है। इस पावन अवसर पे विशाल लक्ष्मी शाह बंजारा हाल में भारी दीवान सजा होया। आज अमृत वेले तो ही सात संगत माई पाई प्रकाश गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में सिर निवाउन ली हम मां के से पूज रहे। सरजी वेले तो ही इस पवित्र स्थान से गुरबाणी का संचार हो रहा है अते गुरु के कीर्तनी इलाही बाणी का गायन कर रहे। आज तो 540 साल पहला सन 1469 ईस्वी में श्री गुरु नानक देव जी ने राय पोई की तलवंडी अर्थात श्री ननकाणा साहब विखे अवतार धारिया। उस समय हर पासे अन्याय ते क्रूरता के बदल छाए हुए सन। सच अते इंसाफ पंख साफ ही उठ गया। उस घोर अंधार की स्थिति में श्री गुरु नानक देव जी ने इस जग में प्रगट होने भाई गुरदास जी ने इस तरह बयान किया कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी दुध का विचानण हुआ जो कर सूर्य भी निकलिया तारे छपे अंधेर को। इस गुरबाणी के सागर में असी आप जी नू भाई साहब भाई मनोहर सिंह गुरिंदर सिंह जी रागी के जत्थे वालों आप जी को कीर्तन श्रवण करवा रहे हैं। आप जी के सामने वो पहला शब्द पढ़ेंगे श्री राग महला पहला तेरा एक नाम। सब तो पहले वो शब्द पढ़ेंगे कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज योग तिर माया भाई मनोहर सिंह।

वैको विद्या विकम विचार गावे को साज करी तन के ही गावे को जी ले फिर दे गावे को जप दिस दूर गावे को विख हाज रह दूर कथना कथी न आवे तोट कथ कथ कथी गोटी गोट गोट देंदा दे लेंदे थक पाही जुगन जुगन तरखाही खाही हुक्मी हुक्म जलाई राह नानक विकस वे परवाह साचा साहेब सा जनाई पाख्या पाहु अपारू आखे मंगे दे दे दात करे दतार फेर के अगर रखिया जत दिस दरबार मुँह के बोलन बोलिया जत सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाऊ बड़ियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानके वह जानिए सब आपे सुचार थाप्या न जाई कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिए मन रखिए पाऊ दुख पर हर सुख कर ले जाई गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रहया समाई गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक दे बजाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसोनी होए नवा खंडा बिच जानी है नाल चल सब कोए चंगा नाव रखाए कह जस कीरत जग ले जे तैसो नजर न आवई ता बात न पुछ के कीटांदर कीट कर दोषी दोस्त करे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे देहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनया ऐसद बीर सुरनाथ सुनया तरत तबल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोह न सख काल नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नाश सुनया ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनया मुख सालाण मंद सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नाश सुनया है सतसंतोख ज्ञान सुनया अषट का शनान सुनया पढ़ पढ़ पाव है मान सुनया लागे सहि ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नाश।

अनाश मन्ने की गात कही ना जाए जे को कह बिछ पछताए कागद कलमना लिखण हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुरतो वह मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मुँह चोटा न खाई मन्ने जम का साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक न पाई मन पथ संपर्क जाई मन मग्न जल पंथ मन धर्म सिद्धि सुन बंध

लोका शोका कर्म प्रमेय अजीत पीत गाय मान जानी कबरे गए भुजंग प्रयाद छंद नमो सर्वमान्य समाति निधाने नमो देव देवे भेखिये भेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे अनंगी अनाथ नरसंगी परमाथे नमो बान बाने नमो मान माने नमो चौर चौरे नमो बान बाने नमो गीत गीते नमो दान दाने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो बान बाने नमो बाद बादे अनंगी नामे दरभंगी दरकामे अनंगी नामे समाधि स्वरूपे परभंगी परमाथे समाधि प्रभुते कलंकंग विनाने कलंक स्वरूपे नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे नमो योग योगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरंग परम वृदे नमो सहस्रपाणे नमो सहस्रपाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय भुगति अपेक्षीय भुगते अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो योग योगेश्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणे गुरु कर्मे नमो प्रीता प्रेत दे विश्व धर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो शाह नमो भूपे नमो दान धान्य नमो मंत्र माने नमो रोग रोगे नमो दक्षिणान्य नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्रंग नमो ऐसे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी रूपे रूपे समातल निवासी सदा सिद्ध दबुद दबृद करता दूर दर्दंग गंगो घरता परं परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदी अभेदी नामंग गावंग समाज तो ब्राजी समाज दस धामंग तेरा जोर जा जरी शंब जले हैं सले हैं पिता वह प्रभु अजुआ दे सब पेश हैं पिजंग पर याद शंब अगा दे बाद ये नंदी स्वरूप नमो सर्व माने समाज तीन धाने नमास्त वंग नरनाथे नमास्त वंग परमाथे नमास्त वंग गंजे नमास्त वंग भंजे नमास्त वंग काले नमास्त वंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेशे नमो राज राजे नमो साजे नमो शाहे नमो महामाये नमो गीत गीते नमो ब्रीत ब्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्वजी नमो सर्व जीतंग नमो सर्व भीतंग नमो सर्व ज्ञान नमो परम दान नमो सर्व मंत्र नमो सर्व यंत्र नमो सर्व दृष्टंग नमो सर्व करिष्ठंग नमो सर्वरंगे तरभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजय विजय समातंग प्रसिजय कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सदिंग नवासी चरपट चंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे खल जोगे जल भोगे जल राजे डल साजे खल धर्मंग ला कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राणंग सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शंभ तव प्रसाद आद्रूपनाद मूर्त जीवन पुरुष बारु सर्व मंत्र मान देव विवाद दारु सर्व बाल सर्व काल को सर्व गोप्रत पाव सर्व बाल सर्व काल

पे आएंगे, सर्वत्र था पे आएंगे, सर्वत्र पान आएंगे, सर्वत्र मान आए के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंग कलीम है, के परमंग फहीम है, के अकलो राम है, के साहेब कलाम है, के उसनो बजू है, तमाम रजू है, हमेश सर्व सलाम है, सनी कदमदा मैं अग्नि मलस्का अग्नि वल बरसता है, वलिंद्र मकान है, जमीन वल जमान है, तमीजल तमाम है, रुजू वल दान है, हरी फल जी मैं दिया कि जकीना ने कल दरांग भेद भंग है, अजी जल नवाज है, अग्नि वल खराज है, निरौत स्वरूप है, धर्मगत बभूत है, पर भक्त प्रवाह है, सजग सुधा है, सदैव स्वरूपा भेदी अनूप है, समास्त राज है, सदा सर्वसाज है, समास्त सलाम है, सदैव काम है, निर्वास रूप है का निर्वास रूप है, अगाध अनूप है, ओंकार आदि ओं आदि रूप है, नाश रूप है, नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गं त्रिपादी गंजे खादे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिभुग स्वरूप है, सज है सुभता है, नरकं प्रणास है, पृथ्वील प्रवास है, निरुक्त प्रवाह है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रज्योत अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, प्रज्योत अनूप है, चाचरीशंभ अपांग नांग भीखा लिखा परमंग अर्म नाद जगाद जय है पय भूत दूत ना सबदा सदंद बंद है, अभगत है विरक्त है नास है प्रकाश है, निजंत निरंतर लेखा देखा है, लिखा भीखा ठाए गाय साम गम है, नीला नाद है, अनहत स्नहत जात जात है, जरपुट चंद प्रसाद सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंख्यता सर्वंग्यता सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांता प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे नंगं स्वरूपे भंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे गाद स्वरूपे निर्बाद विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न कर्म न काये परमं जाये

अंधकारी नमो दे तेजी नमो बृंद बृंद नमो बीज बीजे नमो रासंग दाम संसारांत रूपे नमो ब्रह्म रूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञानमय नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलयकर्त नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्र नाद भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसास नमो भंग भंगे अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिगामे अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे निरपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे समाधि विराजी समाधि त्रिपंगी त्रिकाले नंगी कामे कचरी संद अजय अलय पय वय पूजू अनास काश गंज पांज लख पाख अकाल दयाल लेख पेख नाम काम कहटह अनाथ परमाथ जोनि मोनि नारागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग भरमंग गंजे लेखे भुजंग प्रयात शंभ नमाज तुल प्रणामे समाज तुल प्रणाशे गंजल नामे समाज तुल निवासे कामंग विभूते समाज तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बभूते सदा सचदानंद सदरंग प्रणासी ग्रीमल गनंदा समाज तुल निवासी अजायब बभूते अजायब गनीमे हरियंग गरियंग गरी मधुर ही मैं जदर जगर वर्ती जदर जगर भूते सुयंभ सुभंग सर्वदा सर्वजूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे असदांग संगे अभंगंग बभूते चतर चक्र भारती चतर चक्र भूते सुयम बहुशुभंग सर्वदा सर्वजुगते।

दोषधरन को बल मोवद कियो कड़कड़ के अंतर की जानत बले बुरे की बीर पछानत चिटी दे गुंजरिया सोला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुख

महादेव को कह सदा से वो निरंकर का चिंतन पे वो आप अपनी बुद्ध जति वरद परवरदति तुम्हारा लखना जाए पसारा के बिध सजा प्रथम संसारा एक रूप स्वरूपा रंग पहुरा कई भूपा अंडज जेर सित जिगनी उत्पल खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राज हवा बैठा कहूं समुट भयो संकर कैठा सगरी श्रेठ दिखाए चंपव आज जुगास रूप से चंपव अब रक्षा मेरी तुम करो से खुबारे सिख

आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जाने जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा करे वे कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिन का मोह टूटा तिनका शब्द सच सवारिया कहे नानक यही आनंद है आनंद गुरु ते जाने बाबा जिस तू दे सू जन पावे पावे दसो जन दे जिस नूर क्या करे विचारिया एक परम बुले फिर दिस एक नाम लाग सवारिया गुरप्रसादी जिन्ना मन पै निर्मल जिन्ना पाणा पावे कहे नानक जस दे प्यारे सोई जन पावे आवो संत प्यारे हो अगथ की करें कहानी अगथ केरी कित द्वारे पाई है तन मन धन सब सौ गुरु को हुकम मन्या पाई है हुकम मन्या गुरु गेरा गावो सच्ची बाणी कहे नानक सुनो संतो कथे अगथ कहानी ये मन चंचला जदराई किने न पाया जदराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ही माया मोहनी जिने परम पलाया माया दमोनी तने की जन ठगौली पाईया कुर्बान किता तिसे बिटो जन मोमी।

पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे दूरू संता पुत्रे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पैसर से पूरे गुरते जानी सुनते ब

0: ओका
1: आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वरः सिमरांत शांत सर्वत्र रमणं नानक अगनासन दिल जगदीश्वर आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वरः सिमरांत सदा ज्ञान भंजन सिमरांत शांत सर्वत्र रमण नानक अगन अगनासन दिग जगदीश्वर वेखण सुनन सुनावनो मन मैं दृढ़िया साच पूर रहो सर्वत्र मैं नानक हर रंग राच पौड़ी हरेक निरंजन गाइए सब अंतर सोई करण कार समरथ प्रभ जो करे सोई चिन मैं थापो थापदा तिस बिन मही कोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रब आ सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझ सी निर्मल जन सोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझ सी निर्मल जन सोई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

0: क्षेत्रीय प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम स्लिप तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसीं सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

जी। हर हर नाम पिता गुर हर मार्ग चाली, मेरे मन का नाम आधार है होने बिखजाली। जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली, सुख मेला पहला।

0: ताकि सोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी। दुख रोग बिन से पह परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब तो ऊंच ताकि सोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: केरबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नु पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Seek Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

जुग हो जुग अटल, चबर छत्र दे मालक बाणी के मोहित शब्द गुरु साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी महाराज की मुकदस गोदंबर जुड़ बैठे गुरु सवारे सत्संगी जन वडभागे हां गुरुदेव ने ये सत्संग दियां घड़ियां बख्शिश कीतियां ने। चल रही लड़ीवार विचार दे अधीन बिहागड़े की वार दे विचों सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज दे कृपा कीते हुए दो श्लोक ते नाल ही सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी महाराज की बख्शिश कीती हुई पावन पौड़ी दा पाठ गुरु के सवारियां दी रचना तो आपां सारिआं ने करवन कीता है। पिछले दिनां अंदर जो कुछ गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज ने श्लोकां विच दृढ़ करवाया है वो गुरु के सवारियां पासों समझण दा यतन कीता है। सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज कृपा तय करते हैं, कह लगे अपना आप ना पछाने मूड़ा मूड़ा कहते हैं मूर्ख वे ऑफ टाकिंग दे विच बड़ा बड़ा डिफरेंस होया करता है कि क्वेश्चन पुट करन वाला किस एंगल तो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, उसकी सोच कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो सुनन वाला स्वभावक उसकी मानसिकता नु जान लेंदा है तजर्बे के लिहाज नाल। जिन्हें दाने सज्जन आखदे ने कि बाहरी तल उत्ते यह तीन तरीके ने दस्तार रफ्तार विस्तार किसी भी आइडेंटिफिकेशन वास्ते कि इहदा मानसिक पद्धर कित्थे टिकिया होया है। एक सज्जन कई बार जब सिद्ध गोष्ट का पाठ मैं करदा तो ऐसा अनुभव करदा हाँ कि वह पुगे हुए जोगी जड़े सच्ची मुची घरों कुछ जानन के ख्याल नाल निकले सन ते उन्हां दे कीते हुए अहम सवालां नूं रामकली लाग दे विच सिद्ध गोष्ट गोष्ट दे अखरी अर्थ ने डिस्कशन विचार वटांदरा सिद्ध गोष्ट दा सिरलेख देख के मेरे साहिब अनुभव करदे ने ए उन्हां दे सवाल ने ए आम लुकाई दे भी सवाल हो सकदे ने ते जदों गहरे तल अंदर जा के वाचीदा है ते अज सिख जगत अंदर जदो उन्हां सवालां नूं टुकाईदा है ते एवें लगदा सच्ची मुची ओ साडे सारिआं दे सवाल सी। ओहो जी भावना वाला कोई सज्जन घर तो निकलदा है कुछ जानण वास्ते, किसे सज्जन दा दरवाजा खटखटाउंदा है सुनिआ दी बेनती नूं डोर नॉक करन तो बाद अंदरों आवाज आउंदी है भाई तू कौन है, ते उस सच्ची मुची कुछ जानन दी भावना लेके आया सी ते कहन लगा सजना जे एक गल दा पता होंदा कि मैं कौन हाँ ते फिर मैं तेरे कोल की लैन आउणा सी, अपना आप ना पछाणे मूड़ा इसे गल तू ते जानन वास्ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी महाराज मैं तुहाडे चरण चरण विच आया हाँ, तुहाडी बख्शिश दा पात्र बनन वास्ते आया हाँ, ते तुसी मेरे उत्ते ऐसी कृपा कीती है आवन आए त्रिस्त मैं बंदिया तो दुनिया च ते आ गया है बिन बूझे पास तोर। इतों तक मेरे साहिब ने कृपा की कहन लगे बंदे खोज महाराज किन खोजा दिल हर रोज
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੋਜਾਂਗਾ ਤੇ ਵਟ ਹੈਪਨ ਵਿਦ ਮੀ। ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,

वस्त्र कपड़े पे नील वस्त्र पहरू में प्रवान मिले ताले पूजे पुराण अब आखा के कुठा पक रखाने जो ऊपर किसने आन देख जो का अधिकार ऊपर बैठे कुड़ियार मत बिटा भी मत बिटा।

स्मरंत संत सर्वत्र रमणं नानक अगनासन जगदीशर आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर स्मरंत संत सर्वत्र रमणं नानक अगनासन।

खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रबिया सब लोई जिस आप बुझाई सो बुझसी निर्मल जन सोई खंड ब्रह्मांड।

से आवाजे शब्द कन्हेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटों जिस दियां ए वड़ियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद बस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तह सुख हुआ चित कर अनहद बाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरथे जानी

0: तू नहीं जानदा धर्म ने आशा ने पैरा हेठा घूमता रुदिया ने काका जिंदगी परत के नहीं मिलदी।
1: तू कह रहा
0: काका जिंदगी परत के नहीं मिलदी मौके वन पछानना चाहिए रहे ये संसार भेष्ट दा रूप भी बा लुत्फ जीवन दा मानना चाहिए रहे लुत्फ जीवन दा सुबिया कहे जिसनु सानू बुद्धली दा ए सरूप दिसे तू नहीं जानदा धर्म दे आशानु मौत जिंदगी दा एक रूप दिसे काका तुसी जियाने हो जानदे नहीं दुख मन दे बाद भी सही दाय अल्लाह ताला दी मेर ना लिहालो हशर की तू लीच दरी दाय
1: सासनी साहब जाते फरमाउंदे ने
0: के थोड़े मजहब दा
1: जिहड़ी दी लोहड़ी ने भूमि बह जाने बिठाउण दी होणी उहदे लो आखिर के सुन
0: थोड़े मजहब दा फलसफा होवेगा थोड़े मजहब दा फलसफा होवेगा के समा कबर दे विच लंघाई लाए साडा धर्म ता दसदा खान साहिब चोला छड्डी दा ए चोला पाई दा ए गज के कहा सूबे हैंकड़ भुल जासी ते खंडा जदों जलाब ने तान देना पबक मार के शेरा ने किया अगों जान दिया ने धर्म नहीं जान देना लाल चिराज दा मौत दा खौफ दे के बेईमान घर चाल यजमा थकिया फिर के पैर ना धर्म ने आशा ने सुबह दौर अपना सारा ला थकिया ताक सूबे ने बड़ी लड़ाई है पर लभ्या कख नहीं ओनू तकरार दे विच आखिर जालम ने इस तरह हुक्म दिता जिंदा दोहानू चिड़ो दीवार दे विच
1: साहब दादे शहादत पारे निशमला का फरमाओ
0: जोड़ी हंसा दी खड़ गई मस्त हो गए जोड़ी हंसा दी खड़ गई मस्त हो गए तेरा दे लगने

बेबे नानकी कालू कहता जाके बापू ना चौकर गुजारिया पैसे लई परमात्मा कुटिया है ये थप्पड़ रब दी गल ते मारिया है जेड़े बंदे नू माया दा लोभ हो जाए ते दिल दी गालियों कदी नहीं जान सकदा अखां विच ना रोशनी होवे जिसने ओ नहीं पत्थर ते हीरा पछाण सकदा।

प्रसन्न जी इन शब्द चरण के मंदिर जा चुका इतिहास कहन में कुछ फर्क पैगा हुए समझ आना है समय ने आजाद दी फिर मैं छोटे साहबजादा दी बहुत मास्टरपीस मेरी कविता है वो पेश करांगा जय सच्ची साहब ने हुक्म किया वैभव जी का खालसा वैभव जी सरकार।

पार दे, बाकी जिन्ने देवी देवते ने बदलावन बदले विच एक रब की कीमत विच मेरे को 33 करोड़ देवता मंगे ने दे दिया। मैं आखा मेरा सस्ता सौदा फिर मेरी निगाह बच्चे 33 करोड़ देवतियां की वैल्यू नहीं, मेरी निगाह बच्चे एक रब की वैल्यू हुई। हम सवाल पैदा हो गया कि बाबा नामदेव नु कोई ये गल आखन की शक्ति किवें दे गया कि उस समय अंदर क्योंकि बाबा नामदेव तो कोई वक्री कौम नहीं सी, एक विश्वास सिखी ने तुम आखो कि गुरु की बख्शिश सदका 300-400 साल अंदर एक कौमी रूप धारण कर गई, इनकी अपनी अडोलता है, इनका अपना सिद्धांत है, इनका अपना कल्चर है, इनका अपना लाइफ स्टाइल है जिहड़ा किसी के नाल नहीं मिलता, सब कुछ वक्री किस्म का है, एक वक्रा विषय फिर किसी ने छिड़ा। पर बाबा नामदेव जिहड़ा 700 साल 125 साल पहला होया उदों उहदे कोल इन्नी छिथिरता इन्नी शक्ति इन्नी दृढ़ता किवें आ गई कि यह गल आखे। पर एक ख्याल करो दृढ़ता आउंदी है किसी लजता नाल दलील नाल। हुण नामदेव जी दे सामने सवाल पैदा हो गया कि हे नामदेव तू किवें आखना है कि मैं सारे देवी देवते छड्ड दित्ते, मैनू नहीं दो, मैं इन्हां दी पूजा नहीं करना चाहता। इहदा जवाब दे ते बड़े खूबसूरत ढंग नाल जवाब दिंदे ने। कहिंदे ने दुनिया के लोगों जदों दा मैं एक गल समझ गया ना, मैनू ज्ञान होया। हुण देखो ये गल जिहड़ी है ये साइकोलॉजिकली एक ज्ञान दी है। अज का मनुख इन्ने 100 साल बाद डिकलेयर कर चुका है। बाबा नामदेव कहते जदों तो मैं पता लग्या ना कि जिन की पूजा करिए जिन का ध्यान करिए जिन दे नाल मन लग जाए जिन दे नाल आत्मक संबंध पैदा हो जाए उनदियां आदतां उनका सुभाव आहिस्ता आहिस्ता उनका रूप शकल भी इन्नी प्रभावित होंदी है इन्ना अफेक्ट करती है कि मनुख का अंदर बाहर सब कुछ उनके नाल मिलना शुरू हो जाता है। ये अजकल साइकोलॉजिकली मन गए साइंस बनती है। आम रोजाना जीवन च मैं कई बार करता जो किसी घर कोई बच्ची बच्चा होने वाले हो सियाने बजुर्ग आखते सन इनू कोई डरावनिया बीबी नू कोई डरावनिया फिल्मा ना देखण दिओ जी, किसे गमगीन थां ते ना जाण दिओ जी, घर विच जे कोई फोटो भी लगाओ खूबसूरत होवे, क्योंकि जदों सवेरे उठेगी जदिन रात अंदर जदों बार बार उसनू देखेगी फोटो का प्रभाव भी बच्चे की शकल से पाएगा उसके सुभाव से पाएगा। केवल इतने बस नहीं, इतिहास ने भी एक गल की गवाही दिती कि हरनाकश के घर पहलाद किवें पैदा होया। हरनाकश जालम पहलाद भगत यह किवें पैदा होया तो इतिहासकार लिखता जदों हरनाकश तप करने वास्ते गया तो अपनी पत्नी नू ऋषि दे आश्रम विच छड़ गया ते उदों अजे पहलाद जन्म लैन वाला सी वह दिन रात सत्संग विच जुड़ी रही। हरनाकश का असर ना कबूल के असर उस आश्रम के वातावरण का पिया। एक भगत पैदा होया सर हरनाकश लैन दे कलर कवल भगत प्रहलाद। जिहड़ी चीज विचारां विच चलती रहेगी जिहड़ी विचारधारा अंदर रवानगी करती रहेगी जिस वातावरण विच मनुख रहेगा जिंदे नाल आत्मक संबंध जुड़नगे जिंदी पूजा करेगा जिंदा ध्यान करेगा उस चीज का इफेक्ट अंदर होगा तो अंदरों बाहरों बहुत कुछ उनके नाल संबंधित हो जाएगा। अज की साइंस ने मनिया और कहती अजीब गल है बाबा नामदेव अज तो 700 वर्ष पहला यह गल आख रहे। वह कहते हैं मैं इसलिए सारे ये देवी देवते छड़ दिते ने क्योंकि जिन्हें देवी देवत्या वाल ध्यान दिता है वह सारे पता नहीं किवें बने ने उन्हों का जीवन स्टाइल की है

चार उड़ावे कहने लगे जेडे भैरों का ध्यान धरते ने भूतों का देवता है उनकी सवारी खोते दी सवारी कर दी शक्ल बड़ी डरावनी है भूती ते खोता जरा खाक उड़ा छार उड़ा खोता जरा खेह छार लेटना पसंद करता है ते बाबा नामदेव कहते मैं सोची पै गया है मैं ही भी पूजा करा इनका ध्यान धरा मत कितने ऐसा ना हो स्वभाव मेरे अंदर भी आने लग पे मत कितने वो जी शकल मेरे ते भी ना अपना प्रभाव छड़ जाए मैं किसी डरावनी शकल ते किसी ऐसे कर्मी जिंदगी असवारी जिन्हों पसंद आई है खोते दी कितने वो आदत वो स्वभाव मेरे बिच ना आ जाए मैं इनकी पूजा नहीं करती कह लगे मेरो बहुत जीतला दावे खर माहन उछार उड़ावे फिर दूजे ने आख्या तू शिवां दी पूजा कर शिवां दी पूजा ते आम अज भी हुंदी आता हुंदी ते बाबा नामदेव जी ने जवाब दिता कहन लगे शिव शिव करते जो नर दिहावे शिव शिव का

अरे देखो ये गणेश है तो ना वो मनुख है ना गंदर है। सवारी करता चूहे की पता जो सानू आदत बन। बाबा नानक जी कह लगे मत कितने मेरा भी दिल कर लग पाए मैं खोते की सवारी करा भला प्रबंध करोगे। कह लगे मत कितने मेरे पे भी प्रभाव आवे तो मैं आखा बलद की सवारी करा मैनू समाज प्रबंध करेगा। कह लगे कैसी अजीब घटना लोग जिनकी पूजा कर रहे हैं वो तो प्रबंध नहीं कर रहे। जेड़े शिवा की पूजा करते हैं उन्होंने को पुछो शिव बनना चाहते हो ये रूप धारण करोगे। जेड़े लोग भैरों की पूजा करते हैं उन्होंने को पुछो तुम भैरों वाला रूप प्रवान करते हो ख्याल करो। जेड़े गणेश की पूजा करते हैं उन्होंने को पुछो भला तुम गणेश बनना पहले बनोगे और रूप धारण करोगे। बड़ी अजीब गल है जिंदी पूजा करी जाते हैं उनका रूप प्रवान नहीं करते। बाबा नामदेव जी कह लगे बस जदों का मैनू यह ज्ञान होया ना कि गुण कहे गुणी समावने श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी गुरु कहते जिंदे गुण याद करें जिनका ध्यान धरें उस दे विच तेरा आपा समा जाता है उनके नाल तू एक हो जाता है। जे एक ना हो समझ अजे तू उनका रूप धारण नहीं किया तो इस दम तुर ध्यान भी नहीं कर। गुरु दसम पातशाह जी का ध्यान धरन वाले जड़े ने उन्होंने प्रकाश दाड़ा हो जाता है उन्होंने शीस से दस्तार आ जाती है क्योंकि जिंदा ध्यान धरना उनके वर्गा होना है। पर फैसला करो उन्होंने को भी फैसला लो। एक पासे वो है जिहड़ा बलद ते सवार है एक पासे वो है जिहड़ा खोते ते सवार है एक पासे वो है जिहड़ा चूहे ते सवार है ते एक पासे वो है जिहड़ा नीवे दा सवार है किहड़ा प्रवान है किसे कोल पुछ लो किहड़ा प्रवान। बस एक फैसले ने गुरु दसवीं पातशाह जी दे फैसलिया नाल मिलदे 200 साल गुरु नानक तो भी पहला। कह लगे वो भैया देवी देवत्या मूर्तियां की पूजा करने वाले कर मैनू कोई इतराज नहीं पर एक सिख नू इस पासे प्रेरणा ना दे कि जेड़ा एक निरंकार का पुजारी है जेड़ा एक वाहगुरु नाल जुड़िया होया है जिंदा एको ही गुरु है एको ही रब है एको ही सिद्धांत है उन्हू वख वख देवी देवत्या की पूजा विच ना ला। फैसला बाबा नामदेव जी अपनी रचना तो दे रहे हैं तो कहते हैं।